0: नहीं नहीं नहीं रचति दुःखकरणी नहीं नहीं रचति दुःखकरणी
1: Thank you.

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना।